0: कुछ रास्ते तय नहीं किए जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। तपती धूप में इन रास्तों पर चलना ही अपने आप में एक तपस्या बन जाती है। यह कुछ मीलों की बात नहीं बल्कि सदियों से चलते आ रहे विश्वास की बात है। तो हमने अपने आप से पूछा, क्या हम भी सेवा करके इनकी यात्रा को थोड़ा सुखद बना सकते हैं? जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ नेरोलैक का नो हीट पेंट, जिससे तपती जमीन का तापमान हुआ 15 डिग्री तक कम, और इसने उनके हर सफर को और बेहतर बना दिया।
1: Santa Laburianta se Le Sakta ya Rabasia Masotosh Le Bani Kopari Shatule Eli Granas Kamaurianta sete Le Basianta Rabasia El Sheik Le Brodosh Pratush Kame Sele Masam to Russia Eglabi Santuyase Mele Ramon Santa Rabasi Regrodosh Kabizene Namahantorosh. Hallelujah. Hallelujah. Rabasya Eshle Brodosh Pratuka Basie Mele Kopara Santuyase Me Shankta Yale Brani Shakta Le Brodosh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான், கர்த்தராகிய நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்ற காலத்தில் நடப்பிப்பார். Lego parish ka duna ham tiri ase. Nam nirpadum, nirmula magam nirpadum, Katrude kurubai, Vishwasti kirgil, Katri pastor andore, Anirpadumule kurubai apa, Le santa rabosia, Le basiang tu rege le bradosh, El brazin kanamastie. Elish kazor riband librenoshia. Oh rabasia. The jabatle. Ninga pudidai vandu kalandukondirukringa. Reketa ratu yabase. Kathrune todugirar. Kathrune todugirar. Lego bahase. Nele ma santa rabasia. Lesotosh Pranushka Zen Karabausia Dalavaste Lebradash Ez Lekrodoshe Pranish Kabasie Elas Kabolian Kasete Lerodosh Prazanta Yavase Ex Librenoshe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Raga dana masia lebranosh kabas kalahankosh. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Parishuddhar, Parishuddhar, Parishuddhar. Le soto ya rabase masam tu rosh pralish kaske lebranash elo sefe le rase. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Le bradosh ma santa yabase ma sotosh pradush kamasti anta rabase prako parasya le branosh elish shaktu le bradash eblish kabasti anta rabase. Tonight is your day. Tonight is your visitation. Re santu le bradash ma sotosh prasyant le bradash